0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम ट्रांक चेक यति बेला बिहान को 10 बजे को

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: मध्य पश्चिम जांग चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफरमा तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड।

0: वन रो पार्लर में
1: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आप लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब वही कनेक्टेड
2: मध्य पश्चिम चैक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम संजेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर में सारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश में आत्महत्या का दर बढ़ती गई रहल। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर से सार्वजनिक अलग वार्षिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 में लुम्बिनी प्रदेश में आत्महत्या संबंधी 1376 घटना हो रहा। ऊ मध्य सक्रिय दुर्घटना असार महीना में हुईलबाट कलशी जिला गत रूप में रूपन्देही पाछ दांग द्वासर बड़ी प्रभावित जिला के रूप में देखिल्बा। तथ्यांक अनुसार असार महीना में केवल 166 घटना में 167 जनसे आत्महत्या करलबाट वैशाख में 134 वो जेठ में 119 जनसे आत्महत्या करलक में असार में यी संख्या एकाएक भर्कन 167 पुग्लक हो। यी एक महीना का अवधि में केवल 48 जन बढ़ी आत्महत्या करलक। तथ्यांक वर्षक अन्त्य होर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौती थप गंभीर बनलक संकेत देखा राखल। आत्महत्या के माध्यम से झुल्कन आत्महत्या करना प्रवृत्ति अत्यधिक देखिल्बा। वर्षभरी में झुन्नकर आत्महत्या करलक 1154 घटना दर्ता हुईलबाट। असार महीना में केवल इस 80 का बहर्कन 140 जन से ज्यान गुमाइलबाट। वैशाख में 120 कार्तिक में 108 तथा चैत्र में 900 जन से झुन्नकन आत्महत्या करल रह। ओकर पाछ द्वासर धिउर प्रयोग करगिलक माध्यम विष सेवन करलक। तथ्यांक देखा राखल। विष सेवन कैकन 173 घटना हुईलबाट। असार में 20 असोज ओ कार्तिक में 17 तथा सावन में 16 घटना हो रहा। आगी लगाकन औजार तथा हतियार प्रयोग कैकन ओ हाम फांगकन करगिलक आत्महत्या का घटना भरी धिउर कम रहलबा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से नेपाल सरकार से प्रतिबन्ध लगिलक वस्तु का भौतिक तथा डिजिटल माध्यम से बिक्री वितरण हुईतिरलक गुनासो प्राप्त हुईलक से उहन गतिविधि तत्काल रोक संबंधित सक्कु पक्ष चेतावनी दराखल। विभाग से आज सूचना जारी करते निकासी पैठारी नियंत्रण एन 2013 अनुसार नेपाल सरकार से विभिन्न समय नेपाल राजपत्र मार्फत निकासी व पैठारी में पूर्ण व परिणामात्मक बन्देज लगाकन वस्तु हुक्र आईफे बजार में बिक्री वितरण हुईतरलक विषय प्रति विभाग का गंभीर ध्यान आकर्षण हुईतिरलक जना राखल। सूचना अनुसार सरकार से 2076 साल असार 2 ओ 2076 चैत्र 24 गते लगायत विभिन्न मिति में नेपाल राजपत्र मार्फत कुछ वस्तु का निकासी और पैठारी में प्रतिबंध तथा नियंत्रण संबंधी व्यवस्था करल रह। विभाग से प्रतिबंधित वस्तु का अनाधिकृत पैठारी भंडारण तथा बिक्री वितरण करना कार्य कानून बमोजिम दंडनीय होना उल्लेख करते सक्कु पैठारीकर्ता संचयकर्ता ओ विक्रेता हन कानून से तोकलक दायित्व शर्त तथा बंदिश को पूर्ण पालना कईकन व्यापार व्यवसाय संचालन कर आग्रह कई राखल। कानून विपरीत प्रतिबंधित वस्तु का कारोबार करलक पैगल से निकासी पैठारी नियंत्रण एन 2013 उपभोक्ता संरक्षण एन 2075 तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही कर्जना विभाग जना राखल। सुनसरी का देवानगर गंजम प्रदर्शनकारी से कर्फ्यू तोर्कन प्रदर्शन करल पाछ नेपाली सेना परिचालन करगिलबा। गैलकरा दुई पक्ष बीच का झड़प नियंत्रणक क्रममा गोली चलाएर एकजनाक ज्यान गइरहल कलशे एकजना गोली लागकन घाइते हुईल रह। यी घटना पाछ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी से देवानगंज ओ हरियानगर गांवपालिकाको कुछ क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी करल बा। तर कर्फ्यू उल्लंघन कैकन आज दिन कुन से प्रदर्शन शुरू हुईती रहल बा। प्रदर्शनकारी से आगजनी व तोड़फोड़ शुरू हुईलसंग अवस्था नियंत्रण बाहर पुग्लक कति सेना परिचालन करगिलक हो। यह बीच में सुनसरी का पाछक सुरक्षा अवस्था व घटना पाछक परिस्थिति का समीक्षा तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बारे छलफल कर आज केन्द्रीय सुरक्षा समिति का बैठक बैसना हो रहा। संध्या 5 बजे लाग बैठक बोलिलक गृह मंत्रालय का सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदी जानकारी दे रखले। उसका आज गृह मंत्रालय से सुनसरी में हुईलक घटना का छानबीन ओ मंत्रालय का सहसचिव भूपेन्द्र थापा का संयोजकत्व में 5 सदस्यीय समिति गठन कई राखल। समिति हन दुई समूह बीच का झड़प बारे छानबीन कईकन भविष्य में असीन घटना दोहराई निधिकला दीर्घकालीन समस्या का समाधान उपाय सहित सुझाव पेश कर एक हप्ता का समय देखिल्बा।
हुइठा ताजु थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सञ्जय फे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटे अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कक्षको संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई टु रिली मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चॉइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: 94 मेगाहर्ज में तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जीव दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 0825162110 थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोन तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोनिङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
6: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओडालो घोराई दाङ फोन नम्बर 0825362118।